0: 고팔?
1: 어?
0: 큰종이 울리는 걸 보니 좋은 소식인가 봐.
1: 내 생각도 그래, 로시카. 나쁜 소식인데 큰종이 울릴 리가 없지.
2: एक ओर से आए राजा दूजी ओर से पांडव भी युद्ध हुआ रण में घमासान अंत में जीते जो थे वीर